पहला तित सर्वरडै पहिले नवासा पाणी पावक तनह किया पंक जो मोह पाग नहीं चालै हम देखा तह डूबिये रे।

रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम का बहो आप हसद मोह बचा बहो सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करे सबैरन को आज संघरिया

एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत 17 सहसपुण जाए अर्ध सहसपुण तीन कह जाए। भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीरुष तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र प्रख्यानी त्रिय चरित्र मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त। मस्त शुभ मस्त आप जूं दोहरा। दास जान कर दास पर कीजा कृपा अपार। आप हसदा राख मोहे मन क्रम बचन विचार। चौपाई मैं नागरे सह प्रथम नाऊं। किशन बेशन कभु न त्याऊं।

प्रथम तरों भगवत को ध्याना बहुर करूं कविता बिदनाना कृष्ण जत्था मत त्रित्र चारु चुक हो कबले सुधारु कबि बाच दोहरा जो निज प्रम सो कह जग माहे जो ते प्रभु को त्याए है अंत सुर को जाह दोहरा हर हर जन दोई एक है बेबिचार कठ नाहे जल ते उपज रंग जाओ जल ही बिखर समाय दोहरा जब आए सो प्रभु को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा सुन छेपते सब हूँ कहत सुनाई का बात दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याई पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लह गई मुकुत फड़ पावह गई भगवंत दोहरा

न मानियो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखानियो दोहरा

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दो ता गाव हो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलां सम

0: गोबिंद सिंह गौर नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग, गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदाओं कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार, तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहे गुरु जी की फतेह विघन विनाशन सोए। वाहे गुरु जी की फतेह विघन विनाशन सोए।
1: सतनाम

ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलहो हरलाहा गै बसन सुहेला औद कटा दिन सुरैणा रे मन गुरमिल काज सुवारे रहाओ एहो संसार बेकार सुनसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पिया वै हो रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पाव हो सुख

जन्म मरण दुख चाय हो वैसे पुतक समुदि नूर अरसह पुरसह चट्टी है तुद डिठे सच्ची पातशाह बल जन्म

पूजन तायो। ऊर क्रिया उर ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबाचो बेनती चौपाई। अमरी करो हादर छाउ पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा अपना जान। करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबाए तुम काबो। आप हादर मह बचाबो सुखी बसाए। मोर परवारा सेवक सिख सबाए करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियाए। सब बैरन को आसंगरियाए। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अब न त्याऊं जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है। चौन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाद मुझे अबरिया है। मरण काल का त्रास नवरिया है। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तो जो करे हो रच्छा। राख ले हो मुह राखण हारे। साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंताओ। तमहु परी चातर दस कंताओ। काल पाए ब्रह्मा अवतराओ। काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशाओ। सकल काल का किया तमासाओ। जमन काल जोगी शिव कियो। वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवाराओ। नमस्कार हताय हमाराओ। जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जचन उपजायो। आद अंतिक अवतारा सोई। गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सुबारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो। सतरन को परम बत कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचरिया सूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना। कट कट के पड़ पड़ की जाना। जब कर करा करतारा। प्रजा धरता देह पारा।

आलम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंबो आद अनिल अनाद संभ ताका मूढ़ उच्चारद भेदा जाकू भेम न पावद बेदा ताको कर पाहन अनबानतो माह मूढ़ कथ भेद न जानतो माह देव को कहत सदा सेवो निरंकार का चीनत न पेवो आप अपनी बोध जीती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केहे बिदसजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जे रज सेता जकीनी ओत भुज खान बहर रच दीनी कहु फूल राजा हूँ बैठा कहु सिमट पय शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आद जगाद स्वरूप सजंपव अवरछा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग हरो दोट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जानु पग परे तिहारे तिनके तुम संकट समटारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट नह है रक्षा होता ही सब काला दुष्ट अरिष्ट तरंत काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुर्चा छुप सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फास ते ताहु बारा जिरना नाम ते हारू कहा दर्द दर्द दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माताओ ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राताओ किल बिख सकल देह को हरताओ दोष्ट दोखी अनको छह करता श्री अस्तुज जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावे सोई दुख नत सब व्यापत कोई अड़िल सुनै गोंग जो जाहि सुरसन पावई सुनै मूढ़ चित लाई चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट रंग तिर नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जाय अर्ध सहस पुण तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रबारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख त्रे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ कह गए हो तुहारो द्वार बाहें गहें की लाज अस

तो कथियो कथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किना न पाया, चतुराई न पाया किना, तू सुन मन मेरे आ। एह माया मोहनी जनेत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तना कीती जन ठगौली पाईआ, कुर्बान कीता त सब टहो जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया, ए मन प्यारे आ तू सदा सस माले, एह कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा कमूले न कीचै।

न पाए, हर रस पाए पल पिए हर रस, बहुन तृष्ण लागे आए, एहो हर रस करमी पाई है, सतगुर मिल जिसे आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए, ए शरीर मेरे हर तुम जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जी उपाय जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया तां चलत होवा, चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी

काली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनस रंगी कुदरत।

एक होंदा खाए चलाया था तेना भिकारी कार जल था जिया पुरिया लो आया कार ओ जे आखिस तू हाँ जाने तेना भी तेरी सार नानक भगता।

नानक जनते उपाय कै संभाले सबना जन करते करना किया चिंता भे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जवारी स्वस्थ तिस तिस।

0: आज आप एडमिट का क्या काम आ गए हैं?
1: नहीं
0: आप आ गए हैं जो गया मतवार हो रे वाह

चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह चल मूर्त अनुभव प्रकाश

करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, मन्ना सुरत हुआ मन बुद्ध, मन्ना सगल पवन की सुध, मन्ना मोहे चोटा ना खाए, मन्ना जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग ठाक न पाए, मन पथ स्यो प्रगट जाए, मन मग न चल पंथ, मन धर्म से तीसन बंध।

तिस मन हो न विसरह। अंत न सिफति कहण न अंत, अंत न करना देण न अंत, अंत न वेखण सुनण न अंत, अंत न जाप क्या मन मंत।

केते किते बुद्धा आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते किते होर करे ताख न सकह केई के।

नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवण मरण नह जोर। जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार।

गावन तुदन चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रा सुन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बीचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी स्वरा जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मछ पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे आठ सठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितनावन नानक क्या बीचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना जो तिस दी वड्याई जो तिस पाहवै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पा तिसा हो साहा पति साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा खा सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहे आ जाए कहना वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोए न जाना तेरा केता केवड चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहना ना जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाई आ सिद्धा पुरखा किया वड्याई आ

सिफति परे तेरे पंडा हरा। जैस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवां विसरा मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूख खाई चली है दुख। सो क्यों विसरा मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलक आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना ओहो मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोय, ना को होआ ना को होए। जे वड्या पौ ते वड तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारहै ते कम जात, नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास। राहाओ हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिला तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस, नाम न ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहिरे मन चित वह उद्दमा। जा आहर हर जीव परया, सैल पत्थर मह जंतो पाए। ता कर जुक आगे कर।

रहाओ जकी सर नहीं बार बना ये जीवड़े और ना कोई जिस मत सुख होए करना तो खतर ना मोले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होई निर्वला कटिया जमकी पास सुख दाता पै भंजनो तसे आगे करी अरदास मेहर करी सुमिरवान ता कर जावै रास बहुतो बहुतो अखाड़िया उच उचा ताओ वरना चिड़ना बारा कीमत कहना सिखाओ नानक उपरा मया कर सजदेव अपनो नाओ सो राग श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी तिसमुख उजल होए पूरे गुर ते पाईऐ प्रगट सभनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सचा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम सिहाई सदा संग या गैले छाए रहाओ दुनिया क्या बढ़ियाईया कवना या वै काम माया का रंग सब फिका जातो बिन सुनदान जा कह हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु को ही ऋण काओ अपना जाप त्याग उपाव सियाण सगल छड़ गुर की चरणी लाग ते सही प्राप्त।

अंधेरा राहो न कोई विच हमें कर दुख रोई कहो नानक किन बिध गत होई महला पहल तीजा कल कीरत प्रगट चानण संसार गुरमुख कोई उतरे पार जिसनु नदर करे तिस देवाय नानक गुरमुख रतन सोले वै पौड़ी भगता तैसा सारिया जोड़ कदे न आया करता भुल है न भुलै किसे दा भुलाया भगत आपे मेलियान जिनी सचो सच कमाया ससारी आप खुआ न जिनी कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार न जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करण हर चाकरी जिनी अंदर नाम ते आया दसन दास होए कजन विच आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चा शब्द सुहाया श्लोक महला पहला सबा ही साला जिनी ध्याया एक मन से पूरे सा वक्त उपर लड़ मोए दूजे बोते राहा मन की मती खिंडियां बहुत पै असगा गोते खाए ना निकलै तीजे मोई गिरा भुख तिखा दोए भौंकी आ खाधा होए सवा पिखाने से दोस्ती चौथा आई ऊंग की मीट पवार गया पी उठ चरची अनुवाद सह भरिया की पेड़ बद्धी सबे वेला वक्त साहब जेठी पो होए नानक साहब मन बसै सच्चा नावण होए महला तीजा दूजा सही पूरे सा जिनी पूरा पाया ठीवे परवार अनेकता रंग दर्शन रूप अथाह विरले पाई है कर्म पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सा सुनाई है मुठी तंदा चोर मेल ना पाई है इन चित कठोर सेव गवाई है जित कट सच न पाए सो भन कढ़ाई है क्योंकि पूरा वट तुर तलाई है कोई ने आख कट हम जाई है लेकिन खरे परख दर बिनाई है सौदा इत हट।

जन्म से जावत ब्रह्म न बिन्दते सागर संसार गुर सब दीन तरह के करण कर समरत कहो नानक विचार कारण करते बस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसम के दरबार डाडा बसया सच्चा खसम कलाण कमल बिकसया खसम पूरा पाए मनोरसया दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसे।

सुख सुख और दुख सुख दुख और दोए कपड़े सुख दुख दोए दार कपड़े पहरे जाए मनुख जिथे बोल हारिया तथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरखो लाखो सिरज निहालिया उजड़ पूले राह गुर बकालिया सच गुर साचे बाओ सच संभालिया पाया रतन करा दीवा बालिया सचे शब्द सलाहे सुखिए सच बालिया निर डरिया लग गर्भ से गालिया नाव भूला जग फिर बिता लिया श्लोक मोहला तीजा

सबके सूझे कह कह कतना माया लूझ हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर विचार अकर नानक आख्यो आप लय परात हुए जिस दात पौड़ी हो डाडी बेकार कारे लाया रात दह के बार तुरो फरमाया डाडी सच्ची महल खसम बलाया सच्ची सिर चला कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमती खादा राज तिन सुख पाया डाडी करे पिसाओ शब्द बजाया।

जातो जाए कहाँ ते आवे, कह उपजै कह जाए समावै, क्यों बाध्यो क्यों मुक्ति पावै, क्यों अबनासी सहज समावै।

दात। कर्म धर्म तेरे नाम की जात राव। तू एवड दाता देवनहार, तोट नाही तुद भगत भंडार। किया गर्भ न्यावै रास, जियो पिंड सब तेरे पास। तू मार जीवल बख्श मिलाए, जो भावी त्यों नाम जपाए। तू दाना बीना साचा सिर मेरा है, गुरमत दे भरोसा तेरा है। तन महमैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पिछाता। तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई। गौड़ी महला पहला जिन अकथ

पूजन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वसगत है हर केरी जन नानक संगनागत आए हर रख पै जन केरी गौड़ी पूरी महला चौथा हे मनु आखे न टिके बोरंगी दै दै दिस चल चल हांडे गुरपूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हर सतगुरु लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम करज गुरु भव साडे पर उपकार पुनबो किया भव दुत्र तार पराडे जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गांडन गाडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है त्यो मन मुख गर्भ कलांडे हम जानिया कछु न जानो आगे ज्यो हर आखे तो ठांडे हम भूल चूक गुर कृपा धारो जन नानक उतरे कांडे गौड़ी पूरी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पनवड्डा हे कर डंडौत पनवड्डा हे रहाओ साकत हारा साध न जानिया तन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलै चुबै दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वडवड्डा हे जन नानक नाम आधार टेके हर नामी सुख मंडा हे गौड़ी पूरी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे ठीठा हर दीन दयाल अनग्रो किया हर गुरशब्दी चख डीठा राम हर कीर्तन गुरलव मीठा रहाओ हर अगम गोचर पार ब्रह्म है मिल सतगुरु लाग बसीठा जिन गुरु बचन सुखाने हीरे तिने आगे आन परीठा मन मुख हीरा अत कठोर है तिन अंतर कार करीठा बिसर को बहुदूत पी आया बिख मिख से फूल मिलीठा हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु कस गरड़ शब्द मुख लीठा जन नान गुर के लाले गोले अलग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूरी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर के आगे सतगुरु दाते नाम दृढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिव लागे राहो घट घट रमैया रम तराए गुर शब्द गुरु लिव लागे ओ मन तन देहो काट गुरु को मेरा भ्रम पो गुर बचनी भागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बनायो कस्तवर घर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया धारी तिन जोहन तिन जम जोहन लागे हुन सतगुरु आगे सीस ना बेचया ओए आवे जाए भागे हमरा बिनु सुनो प्रभ ठाकर हम शरण प्रभु हर मागे जन नानक की लाज पत गुरु है सिर बेच सतगुरु आगे गौड़ी पूरी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिलिया अब गवाया हम मैं रो गया सुख पाया धन धन गुरु हर राया राम गुर के बचन हर पाया रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय के गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जीव पिंड सतब सतगुरु आ गया जिन विछणिया हर गल आया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हृदय नाल दिखाया सहज आनंद पया मन मोहर है गुर आ गया आप विच आया हमें अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूरी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे वडपागी गुरु दर्शन पाया धन धन गुरु लेवलावै गुरमुख हर लेवलावै रहाओ हमरा ठाकर सतगुरु पूरा मन गुर की कार कमावै हम माल माल धोवै पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावै हृदय गुरमत राम रसायन जे वाह हर गुण गावै मन रस करस खर आस कना अगाने फिर बहुर भूख न लगावै कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम न पावै जन नानक हर कृपा धारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता गर पुरखे जन्मा वडभागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो हर गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वडभागी मिल सुगुण सजाणी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आओ संत मिलो नाम जपा हावे संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संत अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियाड़े थुर करमा सावन वरसे अमृत जल छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

तन बहुत बैरागिया मेरे गोविंदा हर बाजू तन कुमलैनी जियो। संजना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो। हरियाय मिलया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मंत्र भुख लगाइया जियो। हों रह न सकों बिन देखे मेरे प्रीतम मैं

राम प्रगास मेरे गोविंद हर वेखे आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौने मेरे गोविंद हर आप जाए त्यों वाजा जियो हर अंतर नाम निदान मेरे गोविंद गुर शब्दी हर प्रभ गा जय जियो आप इसरण पवाईंदा मेरे गोविंदा हर भक्त जना राख ला जय जियो भागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिदका जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नाम मैं हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखार पाई जियो गुण गावे संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहु न पव जल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर शब्दी पाई है हर प्रीत मराओ जियो वडभागी जप नाम जियो मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुरु मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरियाड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिला ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सजान जियो गुर मेले हर सन हर सुगुण सजान जियो हो ना मिटो कुरबान जियो हो हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जियो हर खोज फवाई जियो सतगुरु त्रुठा दस्य हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो।

उधरे आप तरह संसार, राम नाम जप एक अहंकार, आप कमाओ अपना उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथे ए निदान, सोए पुरख जपे भगवान, आठ पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानको तिस बल जाओ, राग गोड़ी गौरी महला पंजवा चौप दे दूप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो परायो सोए अपना, जो तज छोड़न तस्यो मन रचना, कहो गुसाइया मिलिए के जो बिबरजत तिस्यों ने रहाओ, झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे न राती, भावे मार्ग टेढ़ा टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुरना, ध्वासरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई, गौड़ी गुवारे री महला पंजवा, काल युग में मिले आए संजोग, जिचर आ गया तिचर भोगे भोग, जले न पाये राम सनेही, कीर्त संजोग सती उठ हो रहो, देखा देखी मन हट जल जाई है, प्रे संग न पावे बोजोन फवाई है, मिल सीत संजम प्रे आज्ञा माने, तिस नारी को दुख ना जमाने, कहो नांगन प्रयो अन परमेश्वर कर जाने, तन सती दरगह परवान्या, गौड़ी गौरी महला पंजवा, हम तन हंत भागड सचनाए, हर गुण गावे सहस पाए रहाओ, प्यो दादे का खोल लिठा खजाना, ता मेरे मन पया निदाना, रतन लाल जांका कशु न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावे खर्चे रन मिल पाई, तोट न आवे बद दो जाए, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने रहा लहर लाए, गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिया दूर, डर चूका देखिया परपूर, सतगुरु अपने को बलहार है, छोड़ न जाए सर परतार है रहाओ, दुख रोग सोग बिसरे जब नाओ, सदा आनंद जहाँ हर गुण गाओ, बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ माया हर चरण गही जय, कहो नान गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार, गौड़ी महला पंजवा, जहाँ का मीत साजन है समिया, तिस जन को का की कमिया, जहाँ की प्रीत गोविंद से लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे रहाओ, जहाँ को रस हर रस है आयो, सो अनरस ना ही लपटायो, जहाँ का कहे दर गया चल है, सो किश को नदर न आवे तल है, जहाँ का सब तिसका होए, नानक ताको सदा सुख होए, घोड़ी महला पंजवा, जहाँ कह दुख सुख सम कर जापै, ताको काड़ा कहाँ ब्यापै, सहज आनंद साधु बाहे, आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ, जहाँ कह वसे मने आए, ताको चिंता कतहू नाई, जहाँ कह बिनस्यो मनते परमा, ता कह कशु नाही डर जमा, जहाँ कह हृदय दियो गुरनामा, कौ नानक ता कह सगल निधाना, घोड़ी महला पंजवा, अगम रूप जा का मान मैं थाना, गौर प्रसाद विरले किने विरले जाना, सहज कथा ले अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त तिसले पहुंचा रहाओ, आनंद बाणी था निराला, ताकी तन मोहे गोपाला, तै सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता, हर घ अनंत सोग नहीं बिया,